अवीयक्षरधाम यवनिमा ऐश्वर्यमुक्तो लयी शोभे अक्षर सात सुंदर छवि लावण्य तेजोमयी कर्ता दिव्य सदा रहे प्रगटजे साकार सर्वोपरि सहजानंद कृपालुणे नित्य नमो सर्वावतारी हरि। मंगलमूर्ति महाप्रभु श्री सहजानंद सुख रूप भक्ति धर्म सुत श्री हरि समरु सदाय अनुप कृपा करो मुझ ऊपरे सुख निधि सहजानंद

अखंड सौभाग्य गणी अमारा इच्छा उरे एज प्रभु जी मारी स्मृति रहो अंतर मात मारी। श्री स्वामी

रे भगवान तो भक्तों ने वश छे, प्रेम भक्ति जेने घटावे तेने रंग हरी राचे अने नाचे। महाराज तो आवी रीते रास में सबने अद्भुत सुख आपे छे, बधाज खान पान के थाक बधो भूली गया, स्वामी नू स्थूल शरीर अने एनाथी हवे फरातू नथी ने, एटले एने एक युक्ति करी,